बिल तो दक्कन फसे होते मियोती फाही पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदु फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरी हा बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देख्के ने रीलोड रास्टस नुनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेटे देने मस देबैवैर बिल नु देखिगे लारिय वीणुए नेंगिगे उलेक नुजेने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही

0: साथी मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नायक
1: नुवदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
2: लवे कफ बहुत लवे